नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, आज के दौर में चिंता हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस चिंता का अंत क्या है? कबीर साहब आज हमें चिंता से नहीं, चिंतन की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि एक भक्त के मन में किस तरह की हलचल होनी चाहिए और किस तरह की नहीं। रिपीट, वे बता रहे हैं कि एक भक्त के मन में किस तरह की हलचल होनी चाहिए और किस तरह की नहीं। श्रोताओं, कबीर आज हमें मानसिक गुलामी से आज़ाद होने का रास्ता दिखा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि असली सुरक्षा कहाँ है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास,

श्रोताओं, इस दोहे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। श्रोताओं, इस दोहे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। कबीर कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की। एक भक्त या एक दास के मन में अगर कोई फिक्र होनी चाहिए तो वो सिर्फ परमात्मा के नाम की ही होनी चाहिए कि मैं कैसे भूलूं, कि मैं उसे भूल न जाऊं, मेरा ध्यान उसे हट न जाए। इसके अलावा और न चिंता दास, उसे दुनिया की किसी भी दूसरी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि कबीर अगली पंक्ति में एक कड़वी हकीकत बयां कर रहे हैं। जे कुछ चितवे राम बिन, यानी उस परमात्मा के चिंतन के अलावा आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस भी चीज की चिंता कर रहे हैं, वह सब सोई काल की पास। पास का अर्थ यहाँ फंदा या जाल है। इसका मतलब यह हुआ कि राम के बिना हर सोच, हर चिंता काल यानी मृत्यु का एक जाल है, जो हमें ज़्यादा उलझाता चला जाता है। जब हम परमात्मा पर भरोसा छोड़कर खुद कर्ता बन जाते हैं, तभी चिंता जन्म लेती हैं। दर्शन कहता है कि अपनी चिंताओं की पोटली उस मालिक को सौंप दो और तुम सिर्फ उसके नाम का चिंतन करो। कबीर यहाँ हमें सरेंडर यानी कि समर्पण की शक्ति सिखा रहे हैं। जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसकी चिंताओं का भार खुद उठा लेते हैं। दोस्तों, आज दिन भर में अपनी चिंताओं की लिस्ट बनाइए और देखिए कि उनमें कितनी राम सही में सार्थकता से जुड़ी हैं, उनमें कितनी राम अर्थात सही में सार्थकता से जुड़ी हैं और कितनी जंजाल से। याद रखिए, राम के बिना जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वह आपको मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बना रहा है। आज अपनी चिंता उसे सौंप दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: नमस्कार, ओम शांती। वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकळ मंगळी, मांगल्य का वर्षा वो भी सदा, हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि माउली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवा सारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं। या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसे ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा, वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर। तो क्या होगा? खुशी होगी ना? तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांग कल्पतरुन से आरव, चेतना चिंतामणि से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है। तो उसकी शुरुआत जो है हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है। चलां कल्पतरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्पतरुण से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है या ऐसे ही कवि कल्पना है, क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है, सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है। वो चल रहा है, चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया। अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, विश्वारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात, वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वे सुखन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित दुख मापनीय। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलां कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलां कल्प तरुण से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलां कल्पतरु उनसे आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंतामणिन से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज।

0: महानी। मागच्या श्लोकात समर्थांनी आपल्याला सांगितलंय की रघुनायकासारखा स्वामी आपल्या पाठीमागे आहे आणि प्रत्यक्ष काळ त्याच्या नजरेखाली काम करत असल्याने कुणालाही भिण्याचं काहीच कारण नाही। श्रीराम आपल्या दासाचे अभिमानी असतात, विनाकारण त्याला कोणी त्रास देऊ लागलं तर हातात धनुष्य बाण घेतलेले राम पुढे होऊन भक्ताचं रक्षण करतात।
1: लभते ज्ञानम, वहां नहीं बोला क्लास अटेंड करने नहीं बोल रहे हैं लोग, है ना। श्रद्धावान, आप कहीं पर रह रही है, एकलव्य उदाहरण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ट्रांसमिशन को
0: बता
1: रहा
0: है, सही बात।
1: इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: स्वामी जी, आज की युवा पीढ़ी जो है ये डिजिटल माध्यम या फिर तनाव या अनियमित जीवन शैली से बहुत ज्यादा घिरी हुई है, तो युवाओं को योग साधना की ओर हमें अगर बढ़ाना है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या प्रभावी हो सकता है?
1: एक चीज है कि जैसे अभी डिजिटल युग है, आज मोबाइल का है ना जमाना, सब लोग मोबाइल मोबाइल के बारे में बात करते हैं, और जहां तक हम देख रहे हैं बहुत लोग मोबाइल के बारे में नकारात्मक बात करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, कोई भी जो चीज है जब लगता है कि समस्या हो गई है, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि मोबाइल के बारे में ऐसा है कि जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल होता है, बाकी जो मोबाइल का होता है वो किसी का नहीं होता है।
0: सही है,
1: है ना। तो ये स्थिति अभी, बाकी मोबाइल के इसमें दोष नहीं है, क्योंकि कह रहे थे कोई भी गजट जो आएगा समाज में, एक जमाने में टेप रिकॉर्डर था, सीडी था, वो कहाँ है आजकल? क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो समाप्त हो गया। वैसी मोबाइल की भी स्थिति आएगी, इससे भी अच्छे गजट आएंगे तो मोबाइल को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये गलत, मोबाइल गलत नहीं है, उसका प्रयोग यदि विवेक से नहीं होता है तो उसमें समस्या हो जाती है। पर उसके लिए सलाह ये है कि एक तो सबसे पहले हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि गजट आ रहे हैं और जाएंगे, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल भी चले जाएगा, नहीं तो मोबाइल के बदले अच्छी चीज आएगी। और बाकी इसको, इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, युवाओं पर, उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ा है
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो उससे क्या होता है कि इसके पार पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, एक तो स्पीक मैके का जो प्रयास है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली, और इन्होंने परंपरा को इसको रूप दिया है, परंपरा रूप में, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास को प्रारंभ करना
0: जी, जी।
1: न केवल योग अभ्यास, जो भी क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल डांस है, जितनी भी क्लासिकल आर्ट्स हैं सबको अभ्यास करना
0: शुरू। जी जी, अभी क्लासिकल आर्ट की बात निकली है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आप स्वयं मृदंग और संगीत से भी जुड़े रहे हैं, क्या संगीत भी ध्यान और एकाग्रता का माध्यम बन सकता है?
1: हमारे गुरुजी बोलते थे बहुत स्पष्ट रूप से, अव्वल संगीत द्वयम पूजा। वो सन्यासी से सिद्ध थे, योगी थे, महात्मा थे, पर उनका ये स्टेटमेंट है, या परंपरा में भी है, शास्त्रों में भी है, अव्वल संगीत द्वयम पूजा। क्योंकि जो संगीत है वो आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है, और हम लोग की परंपरा में, शास्त्रों में अनहत नाद का बहुत स्पष्ट उल्लेख है,
0: अनहत नाद।
1: तो संगीत उसका एक मैनिफेस्टेशन है, एक रूप है, सरल रूप है, उसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम लोग अनहत नाद, अनहत नाद मतलब ये रहता है कि संपूर्ण मस्तिष्क की जागृति, चेतना अच्छा। की जागृति, समाधि का अनुभव, एकत्व का अनुभव, आत्म का अनुभव, तो संगीत के माध्यम से ये है। छोटा सा ताल, छोटा सा सुर आपको महान बन सकता है
0: जी,
1: छोटा सा उदाहरण देखिए, अपने पर्सनल रत्न, अपने शरीर के अंदर में जो हमारे दिल की धड़कन है वो कहाँ से आ रही है, नाड़ी जो पल्स हमारे वो कहाँ से आ रही है, ये ताल है, जो हमारा ब्रह्मांडी ताल है उस शरीर में, ये ताल नाड़ी के रूप में, हृदय की धड़कन के रूप में है, जो हमारी श्वास है सुर है हमारा,
0: सुर है, क्या बात है,
1: जब लगातार चलते रहता है तो ये प्रकृति का दिया हुआ है, संगीत ही हमारा जीवन है, संगीत ही हमारा अस्तित्व है एक्चुअली।
0: वाह बहुत बढ़िया, सच में सच में। स्वामी जी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंसान व्याधि से जुड़ जाता है या कुछ दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत होती है, तभी योग से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या तभी योग से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए या अपनी दैनंदिन जीवन शैली में योगा का अभाव मतलब प्रसारण करना चाहिए?
1: नहीं, ये समाज के लिए सबसे उपयोगी बात है।
0: हाँ
1: नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाकी जो ये बीमारी है या स्वास्थ्य है ना,
0: हाँ,
1: उससे सब आदमी बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए हमारा क्षेत्र तो हीलिंग का है नहीं, तो अब मैं सबके सामने ये रखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग को समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि हु इज द हीलर, मेडिसिन, डॉक्टर, बॉडी और माइंड। यदि हम लोग समाज वाले ये समझे कि भाई हीलर कौन है, क्योंकि बहुत से लोग सोचता दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग डॉक्टर के पास चलेंगे ठीक हो जाएगा, तो बाकी ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। क्यों? एक मैं छोटा सा डाटा देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया में लाखों हॉस्पिटल हैं
0: जी,
1: लाखों डॉक्टर्स
0: हैं,
1: और आपको आश्चर्य होगा जान के कि कम से कम 1 million ton एवरी ईयर वी कंज्यूम मेडिसिन, कल्पना कर लीजिए आप। तो खाना नहीं खा रहे हम लोग, मेडिसिन खा रहे हैं, ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना
0: जी,
1: हम तो थोड़ा बताएं और ज्यादा है,
0: ज्यादा है।
1: तो अब स्थिति ये है कि हीलर कौन है, तो हम लोग वी नीड हीलर्स नॉट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हैव देयर रोल, नीड सोसाइटी नीड्स हीलर,
0: हीलर
1: हु नोज हु इज हीलिंग, हु इज हीलर, हाउ टू हील। तो ये क्या योग जो है इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, उसमें कोई दवाई नहीं है, कोई अप्राकृतिक बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, स्वयं में जो एनर्जी है, जो हीलिंग पावर है, उसी को बढ़ा के अपने आप को स्वस्थ रखना, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं।
0: ये बात समझ में आना चाहिए सभी के कि बहुत जरूरी है, बराबर। आपके हिसाब से योग में निरंतर अभ्यास और अनुशासन, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये पतंजलि जी का योग सूत्र है
0: जी।
1: ये सीधा सा है कि जब भी हम दीर्घ काल तक पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान के साथ निरंतर कोई भी अभ्यास को करेंगे तो उसमें हम लोग स्टेब्लिश हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे, तो बिना इसके तो कुछ दूसरा संभव नहीं है।
0: बराबर। आपने स्वामी जी अपने कार्यों के माध्यम से योग को आश्रमों तक सीमित ना रखते हुए अपने समाज में विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या सोच रही है आपकी?
1: जब आप पूरी प्रकृति को देखेंगे ना, तो वहाँ केवल है देना देना और देना।
0: क्या बात,
1: इंग्लिश में बोलते हैं God gives, gives and forgives.
0: Wow.
1: We get, get and forget.
0: क्या बात है?
1: प्रकृति में पूरा है देना। यदि आप प्रकृति के जो सामान्य प्रवाह उसके उल्टा में जाएंगे तो आपको तो उसे प्रभावित हो जाएंगे, उसका तो घाटा उठाना पड़ेगा। तो ये तो जो भी प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, फील करता है, जब देखता है कि पूरी प्रकृति सब चीज दे रही है, तो संन्यास में तो यही है कि सम्यक रूपेण न्यस्तम, अपनी जितनी भी ऊर्जाएं हैं शारीरिक मानसिक भावनात्मक आध्यात्मिक, वो दूसरे से शेयर करना, दूसरे के उत्थान में, दूसरे के प्रोग्रेस में उसको इन्वेस्ट करने का है
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में स्वामी जी आप हमारे युवा श्रोताओं को योग के बारे में, योग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: नहीं, आजकल के योगा बहुत ही, युवा लोग जो हैं बहुत ही रिसेप्टिव हैं और बहुत जल्दी सब कुछ सीखते हैं, और उनका माध्यम भी बहुत ही अच्छा, जैसे सोशल मीडिया भी है ना, यदि उसका जो सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग हो तो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए स्पीक मैके में सब अभी जो आए हैं प्रोग्राम में, बच्चे लोग 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे, 10 साल के छोटे बच्चे भी हैं,
0: हाँ।
1: जो सुबह 4 बजे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज हमने बोला जैसे यहीं पर हो रहा ना, कान्हा ललित कला केंद्र है ना, वहाँ पर हो रहा है, तो ये कार्यक्रम जब यहाँ पर हो रहा है तो कम से कम 400 बच्चे आए हैं पूरे भारत से। तो छोटे छोटे बच्चे लोग आए जो 10 साल से 20 साल के बीच में हैं, सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के बीच में, क्योंकि सारे ऋषि मुनि उसमें जागृत रहते हैं, देखिए उनके चेहरे में कितनी अच्छी मुस्कुराहट होगी। विवेकानंद जी
0: कहीं पे भी थकान का नामो निशान नहीं है, दिन भर की भाग दौड़ है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है जी।
1: सारे ऋषि मुनि और सबसे बड़ी बात उनके माता पिता कितने खुश हैं कि बच्चे लोग 4 बजे उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास कर रहा है, फिर दूसरी विद्याओं को सीख रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो युवा लोग पूरा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी जरूर जरूर। स्वामी जी, आपने अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से योग, ध्यान, साधना और संगीत और जीवन के बीच सुंदर संबंध को बहुत सरलता से हमारे श्रोताओं को बताया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपने हमें समझाया कि योग केवल शरीर स्वस्थ रखने के लिए माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, जागरूकता, आत्म अवलोकन और संतुलित जीवन की दिशा में एक निरंतर यात्रा भी हो सकती है। इसी संदेश के साथ साथ इस विशेष संवाद को विराम देते हुए मैं आपका जरूर मन से, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।
0: धन्यवाद। हरिओम।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, आज के दौर में चिंता हमारी सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। हम भविष्य की चिंता करते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, धन की चिंता करते हैं, प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस चिंता का अंत क्या है? कबीर साहब आज हमें चिंता से नहीं, चिंतन की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। वे बता रहे हैं कि एक भक्त के मन में किस तरह की हलचल होनी चाहिए और किस तरह की नहीं। रिपीट, वे बता रहे हैं कि एक भक्त के मन में किस तरह की हलचल होनी चाहिए और किस तरह की नहीं। श्रोताओं, कबीर आज हमें मानसिक गुलामी से आज़ाद होने का रास्ता दिखा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि असली सुरक्षा कहाँ है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास।

आवाज। श्रोताओं, इस दोहे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। श्रोताओं, इस दोहे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। कबीर कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की। एक भक्त या एक दास के मन में अगर कोई फिक्र होनी चाहिए तो वो सिर्फ परमात्मा के नाम की ही होनी चाहिए। कि मैं कैसे भूलूं, कि मैं उसे भूल न जाऊं, मेरा ध्यान उसे हट न जाए। इसके अलावा और न चिंता दास, उसे दुनिया की किसी भी दूसरी चीज की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि कवि एक कद बयां कर रहे हैं, चिंतन के अलावा आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस भी चीज की चिंता कर रहे हैं, वह सब सोई काल की पास। पास का अर्थ यहाँ फंदा या जाल है। इसका मतलब यह हुआ कि राम के बिना हर सोच, हर चिंता काल यानी मृत्यु का एक जाल है, जो हमें ज़्यादा उलझाता चला जाता है। जब हम परमात्मा पर भरोसा छोड़कर खुद कर्ता बन जाते हैं, तभी चिंता जन्म लेती हैं। दर्शन कहता है कि अपनी चिंताओं की पोटली उस मालिक को सौंप दो और तुम सिर्फ उसके नाम का चिंतन करो। कबीर यहाँ हमें सरेंडर यानी कि समर्पण की शक्ति सिखा रहे हैं। जो परमात्मा का हो गया, परमात्मा उसकी चिंताओं का भार खुद उठा लेते हैं। दोस्तों, आज दिन भर में अपनी चिंताओं की लिस्ट बनाइए और देखिए कि उनमें कितनी राम सही में सार्थकता से जुड़ी हैं, उनमें कितनी राम अर्थात सही में सार्थकता से जुड़ी हैं और कितनी जंजाल से। याद रखिए, राम के बिना जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, वह आपको मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बना रहा है। आज अपनी चिंता उसे सौंप दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: नमस्कार, ओम शांती। वर्षात सगळं मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। कितनी बढ़िया लाइन है, उसके ऊपर हमने चिंतन किया। वर्षत सकल मंगली, मांगल्य का वर्षा, वो भी सदा हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तब स्वर्ग की नींव तैयार हो जाएगी। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं, माउली कह रही है। यह स्वर्ग की नींव क्यों तैयार हो जाएगी? क्योंकि हम हमेशा जब भी इसके ऊपर चिंतन करते हैं तब उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि मावली का जो विजन है वो सुखमय है। ये दुनिया जो है, संसार जो है, वो सुखमय हो, ऐसा उनका विजन है, ऐसी उनकी इच्छा है, ऐसी उनकी प्रार्थना है, ऐसा उनकी विश्वास है, ऐसा उनका विश्वास है। और इसलिए वो विश्वात्मक देव के पास प्रार्थना करते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब सुखमय हो। और सुखमय होने के लिए क्या लगेगा या कैसा ये सुखमय होगा, उसकी फर्स्ट स्टेप है वर्षत सुकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतू भूता। अभी देखिए, हमें अगर कोई एक भी आदमी मिलता है तो हम बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है। मराठी में कहते हैं देवासारखा भेटलास, देवासारखा, भगवान जैसे आप मिले हैं, भगवान नहीं मिले। क्योंकि भगवान ऐसी चीज है कि हमने कभी उनको देखा ही नहीं, या समझा ही नहीं, या जाना ही नहीं। या अगर कोई कहता है, भगवान को मिलने के लिए इच्छा तो सब रखते हैं, लेकिन सचमुच मिल गया तो मन में कहीं ना कहीं हमने फिक्स करके रखा है कि भगवान तो मिलने वाला नहीं है, वो ऐसी ही कहते हैं। और इसलिए अगर सचमुच भगवान मिल भी गया तो कई लोग या हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। तो भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पहचान क्या है? भगवान को मिलाने के लिए ऐसे लोग आपके पास आएंगे, वर्षत सकल मंगली, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। अभी ऐसे बहुत जो लोग हैं वो टू बी और नॉट टू बी में फंसे हैं, उनके लिए माउली कहती है एक दिन ऐसे आएगा, वर्षत सकल मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी। ईश्वर निष्ठ लोग जो है, जो ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा देंगे या ईश्वर से मिलवा देंगे, ऐसे लोग है उनकी मांदियाळी लग जाएगी। मांदियाळी मीन्स एक दो तीन नहीं, समुदाय। इतने लोग होंगे कि वो आपके पास आएंगे और हमेशा मांगल्य का वर्षाव करेंगे आपके ऊपर, तो क्या होगा? खुशी होगी ना। तो एक वो जो लाइन पूरी होती है, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी, अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता। अभी उसके आगे की लाइन जो है वो बहुत कैची है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये लाइन पहले मैं बोलता हूं। चलांग कल्पतरुण से आरव, चेतना चिंतामणि से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप है और मेरे एक मित्र श्री शांताराम चास्कर, उन्होंने ये ग्रुप में डिस्कशन करते करते ये लाइन पूछी थी। उसका अर्थ कुछ उन्हें डिस्क्रिप्शन वाइज चाहिए था। इसके ऊपर मैंने लिखना थोड़ा मुश्किल लगा तो ये कल्पना आ गई कि ये बोलेंगे, बोल के अगर ये उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे या शेयर करेंगे अपने भावना, अपने विचार, तो ज्यादा अच्छा लगेगा पूरे ग्रुप को, जो मेरे मित्र हैं उनको अच्छा लगा। ये कल्पना अच्छी लगी और ऐसा ये पसायदान जो है, जो आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं, 12 एपिसोड 13 एपिसोड हो गए हैं, ये 14वां है। तो उसकी शुरुआत जो है हर किसी कर्म की, हर किसी कार्य की शुरुआत होने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त हो जाता है, लग जाता है। ऐसे ही हमारे मित्र जो है शांताराम चास्कर, वो उसके लिए निमित्त हो गए हैं, और इसलिए ये पंच लाइन है। चलांकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। देखिए चलांग, चला कल्पतरुण से आरव, कल्पतरु, ये कल्पतरु जो है ये भी कवि कल्पना है। ऐसी बहुत सारी कवि कल्पना हम सोचते हैं, हम ये भी कहते हैं कि स्वर्ग भी कवि कल्पना है, स्वर्ग वैसे कोई होता नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, या स्वर्ग था, स्वर्ग है या ऐसे ही कवि कल्पना है, क्योंकि जो हम कहते हैं स्वर्ग में गए, कोई भी गुजर गया तो कभी आपने सुना है कि वो नरक में गया बोलते हैं? नहीं, वो कहते हैं स्वर्ग में गया। एटलीस्ट हमारी भावना है, हमारी इच्छा है स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग कहीं ना कहीं होगा। और ऊपर हम देखते हैं, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर स्वर्ग है, यही गड़बड़ है। ऊपर है लेकिन चक्र, अगर ये साइकिल है ना, ये सब साइकिल साइक्लिक है, सृष्टि चक्र बोलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः पुनरवसंतो पुनराजया, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मोरारे। ये भी चक्र है, जैसे दिन और रात चक्र है, ये ऋतुओं का चक्र है, वैसे ये युगों का भी चक्र है, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग। अभी चक्र में, या हम मेरी गो राउंड में बैठते हैं, जब मेरा झूला टॉप में रहता है तब दूसरे का झूला बॉटम में रहता है, और जब मैं बॉटम में रहता हूं तो दूसरे का टॉप में रह जाता है। तो अगर स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है और ये चक्र है, तो सतयुग जब ये मैं कलयुग में हूं, तब सतयुग कहां रहेगा? वर्चुअली ऊपर रहेगा। और इसलिए हम सोचते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग ऊपर नहीं है। जैसे सूरज जो है या चांद जो है, बचपन में हम देखते थे कि जैसे जैसे मैं ग्राउंड पे चलता था तो चांद जो है वो मेरे सर पे रहता था, और मुझे लगता था कि मेरे साथ साथ वो चल रहा है। वो चल रहा है? चांद मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं चांद को देख सकता हूं। लेकिन यहां क्या है, कलयुग जो है, कलयुग में बैठा हूं तो कलयुग के साथ स्वर्ग नहीं चल रहा है, स्वर्ग अलग है, क्योंकि वो युग अलग है। और इसलिए हमें लगता है कि यह स्वर्ग ऊपर है। अभी धरती पे स्वर्ग उतर आएगा, और इसलिए ऐसे बहुत सारे जो पेड़ है, प्राजक्त है, पारिजात, ये भी कहते हैं स्वर्ग से आया। अमृत स्वर्ग से आया, गंगा स्वर्ग से आई, और ये जो कल्प वृक्ष है ये भी हम कहते हैं स्वर्ग से आया। ये कल्प वृक्ष क्या कहता है या क्या करता है? कल्प वृक्ष ऐसा है कि उसके नीचे आप बैठो और कोई भी कल्पना करो तो ये कल्पना पूरी हो जाती है। तो ऐसा कल्प वृक्ष, ये कवि कल्पना है या नहीं है उसके ऊपर हम भले बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष अगर हमें मिलेगा तो क्या बाहर आएंगे? आप कल्पना करो, पूरी हो गई। लेकिन उसके लिए भी प्री कंडीशन है, जो हमने पिछले लाइन में देखी थी, विश्व स्वधर में सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेलाहो प्राणी जात। जब आप विश्व स्वधर में सूर्य को देखते हैं, विश्वारा विश्व जब अपने स्वधर में स्थित होके सूरज को या भगवान को देखते हैं, तो बुरी कल्पना, बुरा विचार, बुरी इच्छा मन में पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए जो जे वांछील तो तेलाहो प्राणी जात, वैसे कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठेंगे, भगवान को देखते हुए बैठेंगे, विश्वात्मक देव को याद करते हुए बैठेंगे, तो मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। सर्वे सुखन संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चित दुख मापनीया। यही विचार आएगा कि सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, बाकी सबका भी कल्याण हो। ये विचार आके, ये विचार लेके, ये संकल्प लेके अगर मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठूंगा, ये कल्प वृक्ष कल्पना का वृक्ष ऐसा नहीं है। कल्प वृक्ष मीन सारे कल्प, जो चार युगों का जो एक कल्प माना जाता है, ये कल्प जिसमें समाया हुआ है ऐसा कल्प वृक्ष है। और माउली चलांग कल्प तरुण से आरव, चेतना चिंतामणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। तो माउली जो वर्णन करती है, देखिए कवि जो होता है ना, वो कवि जो वर्णन करता है तो कहीं कसर बाकी नहीं छोड़ता, पूरा का पूरा भरपूर कर देते हैं। और इसलिए माउली कहते हैं चलांग कल्प तरुण से आरव, कल्प तरु एक मिल गया तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बन गई, लेकिन माउली कहती है एक कल्प तरु से क्या होगा, यहां तो कल्प तरुण के बगीचे आ जाएंगे। आरव मीन्स बगीचा, गार्डन, गार्डन ऑफ कल्पतरु। और इतने कल्पतरु आपके सामने आ जाएंगे, वो कैसे हैं? चलांग कल्पतरु उनसे आरव, उसका मतलब क्या है? चेतना चिंतामणिन से गाव, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
1: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज।

0: करा. आपण ठेवून गेलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: श्रोताओ नमस्कार. आज का हमारा कार्यक्रम एक ऐसे विषय पर आधारित है जो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन और जीवन को भी प्रभावित करता है, योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना. आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि उपस्थित है जिन्होंने योग और आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में लंबे समय तक अध्ययन, अभ्यास और प्रशिक्षण किया है. उन्होंने विभिन्न संस्थानों, सामाजिक समूहों तथा योग एवं साधना को पहुंचाने का कार्य भी किया है. तो आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे योग, ध्यान, हठ योग तथा आज के आधुनिक जीवन में इसकी उपयोगिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण.
2: मनावीट मानू नको बोलण्याचा, पुढे मागुता राम जोडेल कैचा.

0: हे सत्यमानी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मागच्या श्लोकात समर्थांनी आपल्याला सांगितलंय की रघुनायकासारखा स्वामी आपल्या पाठीमागे आहे आणि प्रत्यक्ष काळ त्याच्या नजरेखाली काम करत असल्याने कुणालाही भिण्याचं काहीच कारण नाही। श्रीराम आपल्या दासाचे अभिमानी असतात। विनाकारण त्याला कोणी त्रास देऊ लागलं तर हातात धनुष्य बाण घेतलेले राम पुढे होऊन भक्ताचं रक्षण करतात।
1: लभते ज्ञानम, वहाँ नहीं बोला, क्लास अटेंड करने नहीं बोल रहे हैं, है ना। श्रद्धावान, आप कहीं पर रह रही है, एकलव्य उदाहरण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये ट्रांसमिशन को
2: सही,
1: बता
2: सही,
1: रहा है,
2: सही बात।
1: इसलिए गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
2: स्वामी जी, आज की युवा पीढ़ी जो है ये डिजिटल माध्यम या फिर तनाव या अनियमित जीवन शैली से बहुत ज्यादा घिरी हुई है, तो युवाओं को योग साधना की ओर हमें अगर बढ़ाना है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या प्रभावी हो सकता है?
1: एक चीज है कि जैसे अभी डिजिटल युग है, आज मोबाइल का है ना जमाना, सब लोग मोबाइल मोबाइल के बारे में बात करते हैं, और जहाँ तक हम देख रहे हैं बहुत लोग मोबाइल के बारे में नकारात्मक बात करते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, कोई भी जो चीज है जब लगता है कि समस्या हो गई है, जैसे एक उदाहरण देते हैं हम कि मोबाइल के बारे में ऐसा है कि जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका मोबाइल होता है, बाकी जो मोबाइल का होता है वो किसी का नहीं होता है।
2: सही है,
1: है ना। तो ये स्थिति अभी बाकी मोबाइल के इसमें दोष नहीं है, क्योंकि कह रहे थे कोई भी गजट जो आएगा समाज में, एक जमाने में टेप रिकॉर्डर था, सीडी था, वो कहाँ है आजकल? क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो समाप्त हो गया। वैसी मोबाइल की भी स्थिति आएगी, इससे भी अच्छे गजट आएंगे तो मोबाइल को कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये गलत, मोबाइल गलत नहीं है, उसका प्रयोग यदि विवेक से नहीं होता है तो उसमें समस्या हो जाती है। पर उसके लिए सलाह ये है कि एक तो सबसे पहले हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि गजट आ रहे हैं और जाएंगे, इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, मोबाइल भी चले जाएगा, नहीं तो मोबाइल के बदले अच्छी चीज़ आएगी। और बाकी इसको, इसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, युवाओं पर, उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ा है
2: जी,
1: है ना
2: जी।
1: तो उससे क्या होता है कि इसके पार पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, एक तो स्पीक मैके का जो प्रयास है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली, और इन्होंने परंपरा को इसको रूप दिया है, परंपरा रूप में, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास को प्रारंभ करना
2: जी, जी।
1: न केवल योग अभ्यास, जो भी क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल डांस है, जितनी भी क्लासिकल आर्ट्स हैं, सब कुछ अभ्यास करना शुरू
2: जी जी। अभी क्लासिकल आर्ट की बात निकली है तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आप स्वयं मृदंग और संगीत से भी जुड़े रहे हैं, क्या संगीत भी ध्यान और एकाग्रता का माध्यम बन सकता है?
1: हमारे गुरुजी बोलते थे बहुत स्पष्ट रूप से, अव्वल संगीत द्वयम पूजा। वो सन्यासी से सिद्ध थे, योगी थे, महात्मा थे, पर उनका ये स्टेटमेंट है, या परंपरा में भी है, शास्त्रों में भी है, अव्वल संगीत द्वयम पूजा। क्योंकि जो संगीत है वो आत्मा की आवाज है, आत्मा की आवाज है, और हम लोग की परंपरा में, शास्त्रों में अनहत नाद का बहुत स्पष्ट उल्लेख है,
2: अनहत नाद,
1: अनहत नाद। तो संगीत उसका एक मैनिफेस्टेशन है, एक रूप है, सरल रूप है, उसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम लोग अनहत नाद, अनहत नाद मतलब ये रहता है कि संपूर्ण मस्तिष्क की जागृति, चेतना अच्छा। की जागृति, समाधि का अनुभव, एकत्व का अनुभव, आत्म का अनुभव, तो संगीत के माध्यम से ये है। छोटा सा ताल, छोटा सा सुर आपको महान बन सकता है
2: जी,
1: छोटा सा उदाहरण देखिए, अपने पर्सनल रत्न, अपने शरीर के अंदर में जो हमारा दिल की धड़कन है वो कहाँ से आ रही है, नाड़ी जो पल्स हमारे वो कहाँ से आ रही है, ये ताल है, जो हमारा ब्रह्मांडी ताल है उस शरीर में, ये ताल नाड़ी के रूप में, हृदय की धड़कन के रूप में है, जो हमारी श्वास है, सुर है हमारा,
2: सुर है, क्या बात है,
1: जब लगातार चलते रहता है तो ये प्रकृति का दिया हुआ है, संगीत ही हमारा जीवन है, संगीत ही हमारा अस्तित्व है एक्चुअली।
2: वाह बहुत बढ़िया, सच में स्वामी जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इंसान व्याधि से जुड़ जाता है या कुछ दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत होती है, तभी योग से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या तभी योग से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए या अपनी दैनंदिन जीवन शैली में योगा का अभाव मतलब प्रसारण करना चाहिए?
1: ये समाज के लिए सबसे उपयोगी बात है।
2: हाँ
1: नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाकी जो ये बीमारी है या स्वास्थ्य है ना,
2: हाँ,
1: उससे सब आदमी बहुत परेशान रहते हैं। तो देखिए हमारा क्षेत्र तो हीलिंग का है नहीं, तो अब मैं सबके सामने ये रखता हूँ, बहुत अच्छी बात है, सब लोग को समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि हु इज द हीलर, मेडिसिन, डॉक्टर, बॉडी और माइंड। यदि हम लोग समाज वाले ये समझे कि भाई हीलर कौन है, क्योंकि बहुत से लोग सोचता है दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग डॉक्टर के पास चलेंगे ठीक हो जाएगा, तो बाकी ऐसा होता तो नहीं दिख रहा है। क्यों? एक मैं छोटा सा डाटा देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, पूरी दुनिया में लाखों हॉस्पिटल हैं
2: जी,
1: लाखों डॉक्टर्स
2: हैं,
1: और आपको आश्चर्य होगा जान के कि कम से कम 1 मिलियन टन एवरी ईयर वी कंज्यूम मेडिसिन, कल्पना कर लीजिए आप। तो खाना नहीं खा रहे हम लोग, मेडिसिन खा रहे हैं, ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, है ना
2: जी,
1: हम तो थोड़ा बताएं और ज्यादा है,
2: ज्यादा है।
1: तो अब स्थिति ये है कि हीलर कौन है, तो हम लोग वी नीड हीलर्स नॉट डॉक्टर्स, डॉक्टर्स हैव देयर रोल, बट नीड द सोसाइटी नीड्स हीलर्स,
2: हीलर
1: हु नोज हु इज हीलिंग, हु इज हीलर, हाउ टू हील। तो ये क्या योग जो है इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है, उसमें कोई दवाई नहीं है, कोई अप्राकृतिक बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, स्वयं में जो एनर्जी है, जो हीलिंग पावर है, उसी को बढ़ा के अपने आप को स्वस्थ रखना, उसमें कुछ खर्चा भी नहीं।
2: ये बात समझ में आना चाहिए सभी के कि बहुत जरूरी है। बराबर, आपके हिसाब से योग में निरंतर अभ्यास और अनुशासन, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये पतंजलि जी का योग सूत्र है
2: जी।
1: ये सीधा सा है कि जब भी हम दीर्घकाल तक पूरी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ, निरंतर कोई भी अभ्यास को करेंगे तो उसमें हम लोग स्टेब्लिश हो जाएंगे, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसको सिद्ध कर लेंगे, तो बिना इसके तो कुछ दूसरा संभव नहीं है।
2: बराबर, आपने स्वामी जी अपने कार्यों के माध्यम से योग को आश्रमों तक सीमित ना रखते हुए अपने समाज में विभिन्न वर्गों तक पहुंचाया है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या सोच रही आपकी?
1: जब आप पूरी प्रकृति को देखेंगे ना, तो वहाँ केवल है देना देना और देना।
2: क्या बात है?
1: इंग्लिश में बोलते हैं God gives, gives and forgives.
2: Wow.
1: We get, get and forget.
2: क्या बात है?
1: प्रकृति में पूरा है देना। यदि आप प्रकृति के जो सामान्य प्रवाह उसके उल्टा में जाएंगे तो आपको तो उसे प्रभावित हो जाएंगे, उसका तो घाटा उठाना पड़ेगा। तो जो भी प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, फील करता है, जब देखता है कि पूरी प्रकृति सब चीज दे रही है, तो संन्यास में तो यही है कि सम्यक रूपेण न्यस्तम, अपनी जितनी भी ऊर्जाएं हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, वो दूसरे से शेयर करना, दूसरे के उत्थान में, दूसरे के प्रोग्रेस में उसको इन्वेस्ट करने का है
2: जी। हा? बिल्कुल बिल्कुल। अंत में स्वामी जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को योग के बारे में, योग को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: नहीं, आजकल के युवा बहुत ही, युवा लोग जो हैं बहुत ही रिसेप्टिव हैं और बहुत जल्दी सब कुछ सीखते हैं, और उनका माध्यम भी बहुत ही अच्छा, जैसे सोशल मीडिया भी है ना, यदि उसका जो सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग हो तो बहुत अच्छा रहता है। और देखिए स्पीक मैके में सब अभी जो आए हैं प्रोग्राम में, बच्चे लोग 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे, 10 साल के छोटे बच्चे भी हैं।
2: हाँ।
1: जो सुबह 4 बजे क्लास अटेंड कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज हमने बोला, जैसे यहीं पर हो रहा है ना, कान्हा ललित कला केंद्र है ना, वहाँ पर हो रहा है, तो ये कार्यक्रम जब यहाँ पर हो रहा है तो कम से कम 400 बच्चे आए हैं पूरे भारत से। तो छोटे छोटे बच्चे लोग आए जो 10 साल से 20 साल के बीच में हैं, सुबह ठीक 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के बीच में, क्योंकि सारे ऋषि मुनि उस समय जागृत रहते हैं, देखिए उनके चेहरे में कितनी अच्छी मुस्कुराहट होगी। विवेकानंद जी
2: कहीं पे भी थकान का नामो निशान नहीं है, दिन भर की भाग दौड़ है, लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है
1: जी। सारे ऋषि मुनि और सबसे बड़ी बात उनके माता पिता कितने खुश हैं कि बच्चे लोग 4 बजे उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास कर रहा है, फिर दूसरी विद्याओं को सीख रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये तो युवा लोग पूरा आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
2: जी जी, जरूर जरूर। स्वामी जी, आपने अपने अनुभव और विचारों के माध्यम से योग, ध्यान, साधना और संगीत और जीवन के बीच सुंदर संबंध को बहुत सरलता से हमारे श्रोताओं को बताया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपने हमें समझाया कि योग केवल शरीर स्वस्थ रखने के लिए माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, जागरूकता, आत्म अवलोकन और संतुलित जीवन की दिशा में एक निरंतर यात्रा भी हो सकती है। इसी संदेश के साथ साथ इस विशेष संवाद को विराम देते हुए मैं आपका जरूर मन से, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।
2: धन्यवाद। हरिओम।